0: वात्सल्य बुटवल क्लिनिक सुखनगर बुटवल सम्पर्क 9803364060।
1: यति बेला दिउँसोको

0: कसैले पाल्न पर्दैन आमा,
1: दुःख गरेर पढायौ लेखायौ, बहिनीले काम गर्न सक्ने भए त काम गर्थे होला नि, फेरि छोरी हो, जागिर भन्दैमा टाढा पठाउन पनि सकिँदैन।
0: मेरो भन्दा पनि बहिनीको क्षमता धेरै छ, छिमेकी काकाको छोरीलाई जस्तै स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो जागिरको निर्णय गर्न दिउ न, बहिनीले लोकसेवा शिक्षक सेवा आयोग पढेर थाई जागिर पनि खान सक्छिन्, अनि आफू मात्रै होइन हाम्रो परिवारलाई नै पाल्न सक्ने क्षमता पनि राख्छिन्, समाजलाई पनि योगदान दिन सक्छिन्।
2: हो, जुनसुकै किसिमका अपाङ्गता भएका महिलाले काम गर्न सक्छन्, यसका लागि उपयुक्त वातावरण दिउँ,
3: प्रविधिको सही प्रयोग गरौं, लैंगिक हिंसा अन्त्य गरौं। तिलोत्तमा नगरपालिका एकीकृत सेवा पहुँच परियोजना र रेडियो लुम्बिनी तथा तिलोत्तमा टेलिभिजनद्वारा जनहितमा जारी सन्देश।
1: कति धेरै भिड हो, मलाई यो सेतो छडी समातेर उभिन पनि गाह्रो भइसक्यो। ल, मलाई कसले छुँदैछ यताउता, आँखा भनी देख्दिन, कसलाई आरोप लगाउनु र? अपाङ्गता भएको व्यक्ति भनेर हेप्न पाइन्छ? लौ न, सहयोग गर्नुहोस्।
4: ओए, बहिनीलाई के गरेको हँ? त मान्छे नै रहेनछस्।
2: सार्वजनिक यातायातमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई प्राथमिकता दिउँ। अपाङ्गता भएका महिलामाथि हुने दुर्व्यवहार विरुद्ध हामी सबै एक हौं।
3: लैंगिक हिंसा अन्त्य गरौं, हिंसा नगरौं र कोही कसैले हिंसा गर्छ भने नसहने बानीको विकास गरौं। तिलोत्तमा नगरपालिका एकीकृत सेवा पहुँच परियोजना र रेडियो लुम्बिनी तथा तिलोत्तमा टेलिभिजनद्वारा जनहितमा जारी सन्देश।
4: गर्ने एउटा थाक्ने जहान, दिनभरि तिमीले के गरेर बस्छौ हँ? तीन दिन भयो कपडा धुन दिएको, आज पनि त्यसै असरल छन्।
1: मैले काम गरेको तपाईँले कहिले पो देख्नु भएको छ र?
5: के को छलफल हो दाई भाउजू, दुवैजना थकित पनि देखिनुहुन्छ।
1: हेर्नुहोस् न बाबु, हुन त घरका कुरा नभने पनि हुने हो, बिहान उठेदेखि घरको सरसफाई, चिया नास्ता खाना, बच्चालाई स्कूल, दाईलाई अफिस, भाँडा भान्सा करेसा बारीको काम, एक मिनट फुर्सद छैन। तर दाइले मेरो कामै देख्नुहुन्न।
5: हुन त हो, घरका काम कति हुन्छन् कति गणना गरी साध्य छैन। अफिसको एकरो काम भन्दा त घरका काम धेरै गाह्रो छ, आफूले गर्न परे पो थाहा हुन्छ, नगरेकालाई कसरी थाहा होस्।
4: ओहो भाइ, आज तिमीले साँच्चै मेरो आँखा खोलिदियौ, घरमा कम काम हुन्छ म बल्ल बुझे भाइ।
6: एकअर्काको कामको सम्मान गरौ, समाज परिवर्तनमा अग्रसर बनौ।
3: लैंगिक हिंसा अन्त्य गरौं, हिंसा नगरौं र कोही कसैले हिंसा गर्छ भने नसहने बानीको विकास गरौं। तिलोत्तमा नगरपालिका एकीकृत सेवा पहुँच परियोजना र रेडियो लुम्बिनी तथा तिलोत्तमा टेलिभिजनद्वारा जनहितमा जारी सन्देश।
7: नमस्कार हो नमस्कार नाई, यी बुढौती में बुढा बुढी का बात कहिल जाता? अका होई डाक्टर नी बहिनी, बड़की पतोहिया दुई जीव के भाइल भाई, ओकरे देख रेख के जोगाड़ खोजल जात बा। आहा, ई होखे न तरीका सास ससुर के, हाँ तब का पेट में बच्चा रहले के बाद दुई वर्ष के जब तक नाई होई जाले, ई हजार दिन में अम्मा और बच्चा के पोषण युक्त खाना खियाए के चाही और सर सफाई के बारे में ख्याल कैल जाला, तब बच्चा और अम्मा के दोनों जनी के स्वास्थ्य ठीक रही।
8: देख, पाथर खोजत के भगवाने मिले जैसन हो गई, और का करे पड़ाला डॉक्टराइन बहिनी तनी बता दत।
7: ठीक बा, सुनल जाए, रेडियो में लगातार बाजत बा।
6: गोस मछली अंडा सबसे बढ़िया बा, गोस मछली अंडा सबसे बढ़िया बा,
7: फल फूल और साग पात बच्चा के खाना साथ साथ
8: सब मिल के खियावल जाए,
7: कमती में दुई साल तक महतारी के दूध न छोड़ावल जाए, बच्चा चालाक और निरोगी बनावल जाए। हाँ, हम ते बच्चा के स्वास्थ्य बनावे के संति छह महीना पूरा भइले के बाद अम्मा के दूध के साथ सक भर ते घर के ताजा और तरकारी अंडा मछरी गोश हरियर साग पात और पियर जात के फल फूल खियावेली।
8: ओकरे साथ साथ गर्भवती मेहरारू के रोज रोज जितना खियावल जात रहल गे उसे एक जगह बेची दिहल जाए, और बच्चा के महतारी के जितना देत रहल गे रोज उसे दुई जगह बेची देवल जाए।
7: लेकिन ये सब खियाए वाला चीज और तैयार करे के खियावे के समय में सर सफाई में ठीक से ध्यान दिए के चाहिए, खास कर

0: के हाथ सफा रखा, खाए वाला सामान ठीक से धो के और पानी भी तक भर धिका के पिए के चाही, बुझलू ने।
1: आईडी नेपाल के आर्थिक सहयोग और सेतो गुरास बाल विकास सेवा रूपन्देही के व्यवस्थापन में संचालित पोषण मार्फत जीवन रूपांतरण परियोजना और रूपन्देही एफएम द्वारा सचेतना में जारी संदेश।
2: सबैको बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको साधारण सभाको मिति परिवर्तन गरिएको बारे अत्यन्तै जरुरी सूचना। यस सबैको बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको पाँचौं वार्षिक साधारण सभा यही असोज 10 गते आयोजना गरिएकोमा मौसम विज्ञान विभागको सूचना अनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा समेत असोज 9 देखि 11 गतेसम्म मेघ गर्जन चट्याङ हावाहुरी भारीदेखि धेरै भारी वर्षा तथा एक दुई स्थानमा अति भारी वर्षाको समेत सम्भावना भएकोले संचालक समितिको असोज 7 गते बसेको निर्णय अनुसार उक्त दिनको साधारण सभा असोज 18 गते पूर्व निर्धारित स्थानहरूमा इकाइ सभा आयोजना गरिने बिहोरा सम्पूर्ण सदस्यहरूलाई जानकारी गराउँदछौ। मौसमको सम्भावित विपदका कारण साधारण सभाको मिति परिवर्तन गर्नु परेकोमा क्षमा प्रार्थी छौ। अनुरोधक सबैको बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड तिलोत्तमा 5 मडिग्राम।

नमस्कार, रेडियो लुम्बिनी अपराह्न 5 बजे हाल खबर में दिवाकर पंथी को स्वागत छ। यो हाल खबर एफएम 96.8 MHz, अनलाइन www.radiolumini.org, विभिन्न मोबाइल एप्लीकेशन र रेडियो लुम्बिनी को फेसबुक पेज बाट प्रत्यक्ष सुन्न सकिन्छ। हाल खबर को शुरू में मुख्य खबर शीर्षक। राष्ट्रसंघको 81औं महासभा में प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह को संबोधन, नेपाल जलवायु का संबंध में सबैले दायित्व पूरा गर्नुपर्ने में जोड़। शनिबार र आइतबार देश का पश्चिमी क्षेत्र में वर्षा को गतिविधि बढ़ने, सोमवारदेखि मौसम सुधार हुँदै जाने मौसमविद को भनाई। अविरल वर्षा र पहिरो का कारण विभिन्न स्थान में सड़क यातायात अवरूद्ध, त्रिभुवन राजपथ में सवारी को चाप बढ़ेपछि समय तालिका निर्धारण। 2 दिन में भयो प्राकृतिक विपद का 40 घटना, तिनाउर त्रिशूली नदी में जल सतह पार गयो सतर्कता तह, उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह। रूपन्देही में कांग्रेस को 15 महाधिवेशन अंतर्गत निर्धारित निर्वाचन तालिका को मिति परिवर्तन र एशियाली खेलकूद में अफगानिस्तान 5 विकेट हराउँदै नेपालको विजयी शुरूआत।

0: वात्सल्य बुटवल क्लिनिक सुखनगर बुटवल सम्पर्क 9803364460।
1: यति बेला साँझको

नमस्कार। रेडियो लुम्बिनी साझा 7 बजे हाल खबर में दिवाकर पंथी को स्वागत छ। यो हाल खबर एफएम 96.8 MHz अनलाइन www.radiolumbini.org विभिन्न मोबाइल एप्लीकेशन र रेडियो लुम्बिनी को फेसबुक पेज बाट प्रत्यक्ष रूप में सुन्न सकिन्छ। हाल खबर को शुरू में मुख्य खबर शीर्षक